0: ये है
1: लाइका रेडियो.
2: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
3: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर.
2: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो, अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
3: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन.
2: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स.
3: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50 प्लस एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी.
2: एंड द बेस्ट पार्ट, टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000.
3: टू बुक कॉल आवर लंदन ऑफिस ऑन 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
2: High appreciation.
3: In Dubai.
4: Uncle G spent £40,000 on rent, but zero online. His shop is empty. His nephew's TikTok is booming. Be seen. Visit HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Outdated is out of business. Visit HeartyHanks.com today.
5: This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network. 7 stations, 1 podcast, 1 mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0116 471 0697 or sales at leicamedia.co.uk. Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

0: शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एज रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई इवेंटिम अपोलो हैमरस्मिथ हमारे राम। बुक योर टिकट्स नाउ, विजिट www.eventimapolo.co.uk। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक आर रेडियो।
1: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
2: Relax, I've booked the Uber already.
1: How? My roaming isn't even working yet.
2: I switched to Simzy before we left London.
1: Simzy? Since when are you the tech expert?
2: Since I decided I want a stress-free holiday.
3: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified. T's and C's.
4: Soothing you through the night and early morning. This is Leica Radio Midlands.

0: Breaker Radio.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
0: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Like Our Radio.
3: Your father has built his business on trust. Your son will look for it online. No website, no future. Secure your legacy. Visit HeartyHanks.com today. Hearty Hanks. Build your future before someone else does. Visit HeartyHanks.com today.
0: This is the largest commercial Asian radio network in the UK. Get your products advertised across the largest Asian radio network. We are Leica Radio. Email sales at leicamedia.co.uk. Radio Wally takes you on a journey of hit tracks every evening at 7 p.m. Leica.

गावे को गुण वडियाईया चार, गावे को विद्या विखम विचार, गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लय फिर दे, गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा दूर।

जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पथ्यों प्रगट जाए, मन्ने मग ना चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध।

मूर्ख अंध गोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड़ हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई भलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

जिव तिस दी वडियाई, जो तिस भावे सोई करसी, हुक्म ना करना जाई। सो पातशाह साहिब नानक रहन जाई।

राहत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध।

कर कर वेखै सृजनहार, नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसै आदेश, आद अनिल अनाद अनात, जुग जुग एको वेस, एक दूजी बोल लख होवै लख होवै लखवीस, लख लख

जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुटै संसार, जिस हथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच न कोए। राती रुती चित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोन पंच परवार।

काहे पंछी पिंजरे से छूट गए, सब अपने वादे टूट गए, लो साहेब हमसे रूठ गए।

0: Asha Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Wally Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: Ek aitihasik ane divya avsar. Paris ma bhavya BAPS Swaminarayan Mandir na grand opening ma darshan no labh. Aap pavitra yatra ma jodao apna parivar sathe. Jyan madshe shanti, bhakti ane anand. Ane sathe Eiffel Tower, Seine River Cruise ane Paris City Tour no anand mano. Departure 5 September na Mantra Holidays. Call karo 0203-773-6333. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
2: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
3: कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर. यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा, फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स. सबके लिए कुछ न कुछ है. 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS पर. चाहे डाइन इन करो, टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरी से मंगवाओ. कॉल कीजिए 0116-332-5100. एग जंक्शन जो वेम्बली और किंग्सबरी में तो है, अब लेस्टर में जहाँ हर बाइट है एक्स्ट्रा.
4: Punjab, the biggest tunes.

0: Today, Lenfi is registered by the FCA. T's and C's apply.
1: अपने बिजनेस को UK के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें. Like our radio sales on 0116-471-0697 या ईमेल करें sales@lykamedia.co.uk.
2: Your wake up call. This is Kajal.

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: ഗുഡ് മോർണിംഗ്. വെൽക്കം ടു ദ വേൾഡ് ഓഫ് എന്റർടൈൻമെന്റ്. മനോരഞ്ജൻ കി ദുനിയാ മേ സ്വാഗത് ഹൈ ശ്രോതാവോ കാ, ഖുശ് ആമദീദ് ജി ആയാനൂ. മൈ നേം ഇസ് രവി ശർമ്മ, മനോരഞ്ജൻ പ്രോഗ്രാം ലേക്കർ മേ ആപ്കി സേവാ മേ ദോപഹർ ബാദ് ഏക് ബജേ തക് ഹാസിർ ഹൂ. ഔർ ബഹനോ ഭായിയോ, ആപ് സബ് കി ഓർ സേ പഹലേ തോ താങ്ക്സ് കഹൂംഗാ കാജൽ കോ. കാജൽ, ഗെറ്റ് വെൽ സൂൺ ആൻഡ് ഗെറ്റ് ബാക്ക് ടുമോറോ ഇൻ എ ഹെൽദി ഷേപ്. सोमवार वर्ष 2026 के जून महीने की 8 तारीख और वक्त 10:05 हुए हैं साहब सुबह के. यहाँ यूके में आपके यहाँ क्या बजा है? अरे आपके यहाँ गाना बजेगा, अभी लगाऊंगा आपके लिए. जुड़े रहिएगा हमारे साथ. गीत संगीत सूचनाएं समाचार चिंतन विचार और भाई कुछ हंसी के ठाक और कुछ गंभीर बातचीत विषय. लेकिन शुरुआत करेंगे शायरी से और शायरी में एक वादा एक इरादा कि ना एक से ना दो से हजारों से ज्यादा, ना एक से ना दो से हजारों से ज्यादा, जमाने के रंगीन नजारों से ज्यादा तुम्हें प्यार करते हैं कितना बताएं, सभी आसमां के सितारों से ज्यादा. सुनो अपनी एक मुस्कुराहट की कीमत गुलिस्तां के लाखों बहारों से ज्यादा, गुलिस्तां की लाखों बहारों से ज्यादा. नहीं दरमियां कोई अपनों का बंधन, मगर तेरी चाहत तेरे प्यारों से ज्यादा.
1: Like a radio. Let's return to the biggest hits back to back. This is Like a Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Like a Radio mobile app and listen wherever you are in the world. This is Like a Radio across the Midlands.
0: और तुम्हें प्यार करते हैं कितना बताएं, सभी आसमां के सितारों से ज्यादा. यकीन नहीं आता तो गिनना शुरू कर दो.

0: बताइए तुझे कितना प्यार करे, एक किलो, दो किलो, एक मीटर, दो मीटर, एक काश प्यार को मापने का कोई पैमाना होता और भाई वो हम सब का जाना पहचाना होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। प्यार प्यार है, इसका तो ना कोई नाम हो सकता है, ना कोई साइज हो सकता है, ना कोई आकार हो सकता है। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। सुना है ना, हमने देखी है इन आंखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम ना दो। वो प्यार प्यार होता है, भाई, चाचा, भतीजा, दोस्त, मित्र, ये जितने भी नाम है ना, ये सब प्यार को अभिव्यक्त नहीं करते हैं। प्यार एक जज्बा है, उसके ना देखा जा सकता है, ना तोला जा सकता है, ना मापा जा सकता है, ना भाई उसको क्या कहें, बस सिर्फ महसूस किया जाता है। कितना होगा कुछ नहीं कह सकते। राइट, दो गीत हमने परोसे आपको और मुझे यकीन है कि आपको पसंद आए होंगे। पहला गीत हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, दैट वाज टेकन फ्रॉम द फिल्म कुर्बानी। और भाई दूसरा गीत जो अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में था, एंड दैट वाज टेकन फ्रॉम द फिल्म कुदरत का कानून। तो भाई बैक टू बैक संगीत से शुरुआत होती है प्रोग्राम की और उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम ये बताते हुए कि आज भारतीय मुद्रा में पाउंड का रेट क्या चल रहा है।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो साहब, एक पाउंड ब्रिटिश स्टर्लिंग जो है वो आज आपको दिला सकता है मैक्सिमम 127.1 इंडियन रुपीज, 127.10 रुपए भारतीय मुद्रा में ये रेट चल रहा है पाउंड का। बट भाई सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI योनो ऐप और एनी ब्रांच ऑफ SBI बिफोर एंड ऑफ जून, देन बी इन टू विन ए 75 pounds वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर 1000 pounds। इतना ही नहीं, ऑल्सो ए 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक वेन सेंडिंग ओवर 2000 pounds। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
2: ये है
1: लाइका रेडियो।

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम में। और अब है ना भाइयों, खबरों की ओर मुड़ते हुए एक बात बड़ी चिंताजनक है कि लोगों में, खासकर नौजवानों में, गुस्सा, नफरत, लड़ाई झगड़े की भावना, स्ट्रेस, ये सब चीजें बढ़ती जा रही हैं और खबरें कुछ इस तरह की आ रही हैं। अब वीकेंड पर क्या हुआ, इमरजेंसी क्रू वर कॉल्ड टू रिवर रोड बार्किंग एट अराउंड 11:20 PM ऑन सैटरडे नाइट एंड दे फाउंड 3 men 22, 23 और 28 साल के 3 नौजवानों को जो है जख्मी किया गया था चाकू के वार से। और इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं भाई, ब्रिटेन में चिंता का विषय है और उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया, ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन समझा जाता है कि ये अटेम्प्टेड मर्डर की घटना है, छानबीन चल रही है। आइए और खबरें क्या क्या हैं नजर मारते हैं, चलते हैं समाचारों की ओर। लाइका रेडियो नेटवर्क, अब आप रवि शर्मा से आज के प्रमुख समाचार सुनिए। भारत से आने वाली खबरों में टीएमसी नेता जहांगीर खान नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ईरान ने अप्रैल के बाद पहली बार इसराइल पर मिसाइल्स दागी हैं। और इसराइल पर ईरान के ताजा हमलों के बाद कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आ गया है, यानी प्राइसेस और बढ़ गई हैं। फिलीपींस के दक्षिणी इलाके में 7.8 तीव्रता का तेज भूकंप आज जलजला आया है। आइए देखते हैं विस्तार से खबरें। ईरान और इसराइल के बीच ताजा फौजी झड़पों के बाद तेहरान में भारतीय एम्बेसी ने एक एडवाइजरी जारी की है। एम्बेसी ने सभी हिंदुस्तानियों से, भारतीयों से ईरान की यात्रा न करने की अपील की है। मत जाइए उधर, लड़ाई बढ़ रही है, खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इसके अलावा एम्बेसी ने यह भी कहा है कि ईरान में रह रहे भारतीय जल्द से जल्द उपलब्ध साधनों से, जो वॉट एवर इज अवेलेबल बाय मींस, इफ यू कैन लीव ईरान। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि हाल के घटनाक्रम को देखते हुए एम्बेसी ये बात दोहराती है कि सभी भारतीय नागरिक किसी भी तरह ईरान की यात्रा से बचें। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने, IRGC ने दावा किया है कि उसने इसराइल के नेवातिम और तेल नौ वायु सेना ठिकानों को निशाना बनाया है। इससे पहले ईरानी सरकारी टीवी ने बताया था कि तेहरान, तबरीज और इस्फहान शहरों में धमाकों की आवाजें सुनी गई थी। मतलब दोनों तरफ से अटैक किए जा रहे हैं, लड़ाई रुकने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। भारत से आने वाली खबरों में टीएमसी के राज्यसभा मेंबर सुखेंदु शेखर रे का इस्तीफा आ गया है। उसने अपनी ही पार्टी पर इल्जाम लगाए हैं। तृणमूल कांग्रेस के भाई पश्चिमी बंगाल में कड़ी हार के बाद एक एक करके उसके नेता साथ छोड़ रहे हैं, पार्टी का या ममता बनर्जी का। सुखेंदु शेखर ने अपनी राज्यसभा की मेंबरशिप और पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 15 सालों के शासन को अराजक कहा है, क्रिटिसाइज किया है। फिलीपींस में भूकंप से मरने वालों की तादाद 15 हो गई है, 129 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मुल्क में आए 7.8 तीव्रता के तेज भूकंप से मरने वालों की तादाद बढ़ गई है। फिलीपींस में ये हादसा हुआ है। स्थानीय नागरिक सुरक्षा कार्यालय के डायरेक्टर रोड्रिगो सोस्मेन के मुताबिक 15 में से 12 मौतें सोक्स साजेन इलाके में हुई हैं। ये इलाका 4 प्रांतों और एक शहर में फैला हुआ है। बताया गया है कि इस इलाके में कम से कम 129 लोग जख्मी भी हुए हैं। फिलीपींस इंस्टीट्यूट ऑफ वॉल्केनोलॉजी एंड सिस्मोलॉजी ने बताया है कि मिंडानाओ के 6 इलाकों में सुनामी की लहरें दर्ज की गई हैं। त्रिनमूल तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी वाली पार्टी टीएमसी के नेता जहांगीर खान को पश्चिमी बंगाल पुलिस की एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स ने नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि जहांगीर खान नेपाल बॉर्डर के रास्ते मुल्क से भागने की कोशिश कर रहे थे, इसी दौरान उन्हें पकड़ा गया। हाल ही में पश्चिमी बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट पर हुए बाई इलेक्शन की वजह से जहांगीर खान चर्चा में आए थे। क्रिकेट की बात करें, अफगानिस्तान और भारत के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है, लेकिन अफगानिस्तान पहली पारी में ऑल आउट हो गए। डेब्यू मैच में चमकने वाले मानव सुथार का नाम उभर कर सामने आया है। भाई भारतीय टीम में ये नया गेंदबाज पहला मैच खेल रहा है, लेकिन पहले ही मैच में उसने चमत्कार करके दिखाया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच न्यू चंडीगढ़ मैदान में इकलौता टेस्ट मैच चल रहा है। इस मैच में भारत के लिए डेब्यू करने वाले मानव सुथार की काफी चर्चा है। मानव सुथार ने अफगानिस्तान के खिलाफ पहली पारी में 6 विकेट चटकाए हैं। उन्होंने किफायती गेंदबाजी करते हुए 22 ओवर्स में सिर्फ 33 रन दिए, 6 विकेट लिए। भारतीय टीम इस मैच में बड़ी मजबूत स्थिति में है। पहले बल्लेबाजी में दम दिखाने के बाद भारतीय गेंदबाजों ने भी जबरदस्त प्रदर्शन किया है। ताजा स्कोर हम बताएं आपको, भारतीय टीम ने पहली इनिंग में 564 रन बनाकर पारी डिक्लेयर की थी और फिर मेहमान टीम को अफगानिस्तान की टीम को 152 रन पर समेट दिया और उसके बाद फिर उन्हें दोबारा से बैटिंग करने का न्योता दिया गया। ताजा स्कोर हम आपको बताएंगे, अब से थोड़ी देर बाद सुनते रहिएगा। अमेरिकी शेयर बाजारों में पिछले शुक्रवार को आई तेज गिरावट के बाद इसराइल और ईरान के बीच ताजा अटैक से भारत समेत एशिया के शेयर बाजारों में गिरावट देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि बीएसई का 30 शेयर्स वाला सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में करीब 750 अंक टूट गया है। ईरान ने संडे को इसराइल पर कई मिसाइलें दागी और इसके जवाब में इसराइल ने भी ईरानी ठिकानों पर अटैक किए हैं। ईरान की ओर से इसराइल पर मिसाइल हमलों और बाद में इसराइली एयरफोर्स की जवाबी कार्रवाई के बाद आज सुबह एशियाई बाजारों में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारत के भाई एक गेंदबाज की चर्चा अभी हमने की, लेकिन एक बैटर या बैट्समैन कहिए, खिलाड़ी, वो भी विश्व भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। नाम है उनका वैभव सूर्यवंशी। साउथ अफ्रीका के फॉर्मर क्रिकेटर्स एबी डिविलियर्स ने इस क्रिकेटर की जबरदस्त तारीफ की है। कहा है कि अगर वैभव चाहें तो रेड बॉल क्रिकेट खेल सकते हैं। आ रही है टीम भाई भारत की इंग्लैंड और आयरलैंड के दौरे पर, देखेंगे इसका प्रदर्शन। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
4: ये है Like a Radio Tasty Track of the Hour brought to you by Coca Noodles।
3: ये लौटते हैं संगीत की ओर। संगीत में गीतों की शब्दावली में कुछ शरारतें और कुछ शराफतें। आंखों का काम है लड़ना और लड़ाना। आंखों का काम है लड़ना और लड़ाना, कोई तो बीच में आना चाहिए, लोगों को चश्मा लगाना चाहिए ताकि आंख मारे तो किसी को लगे नहीं।

0: जाए।
1: गलत बात है ये, गलत सूचना दे रहे हैं भाई, हमने एक्सपीरियंस करके देखा है। एक आँख मारू दोनों आँखें मारू तो छोरी पट जाए, गलत बात है। छोरी तो नहीं पटती है, छोरा पिट जाए, छोरा पिट जाए, ओ छोरा पिट जाए,
0: छोरी पट जाए।
1: पहले पता कर लेना चाहिए भाई छोरी के कितने भाई हैं, उनमें से कितने पहलवान हैं।
2: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today. Ye hai Laika Radio.
3: Laika Radio.
2: Holiday breaks are brought to you by South All Travel.
1: और साउथ ऑल ट्रेवल का वो संदेश हम आप तक भाई पहुंचा रहे हैं, फिर याद दिला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इन गर्मियों में छुट्टियों का मूड बना लीजिए साउथ ऑल ट्रेवल के साथ। एक्सप्लोर बीच ब्रेक्स, सिटी एस्केप्स एंड मोर विद हॉलीडे डील्स दैट इंक्लूड फ्लाइट्स, होटल्स एंड एटॉल प्रोटेक्शन। भाई 40 वर्षों से भी ज़्यादा देर से वो सैलानियों के दिल में अपना भरोसा जगा चुके हैं और ब्रिटिश ट्रैवल अवार्ड भी पा चुके हैं। तो विजिट साउथ ऑल ट्रैवल, कॉल 0208-574-8410।
2: Holiday breaks were brought to you by South All Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Laika Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Laika Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows or log on to laikaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@laikaradio.com or you can advertise on the Laika Radio Network by emailing sales@laikamedia.co.uk. This is the Laika Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
4: Har case mein kam se kam ek witness to hota hi hai. Murderer khud.
5: Kolkata mein hamare gharon ke aas paas ye sab ho raha hai. I'm Dr. Sandeep Chakraborty, owner psychiatrist.
6: One more gruesome murder.
4: Dono victims 20s mein, dono female. He's not going to stop. There are many more in danger.
7: Karishma Kapoor in and as Brown, now streaming on Hindi Z5.
8: Maharaja Tours presents Diwali Dhamaka 2026, 12-night Diwali or Navratri cruise on MSC Virtuosa. Bhajan jamming, Mehfil nights, Ras Garba, Bollywood entertainment or full-on maza. Spain or Portugal ke sunshine ports, full boat cruise or Indian khana included. From only £1,179 per person, visit maharajatours.co.uk ya call 07956-154-846.
9: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with

स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे भाग में। लाइका रेडियो नेटवर्क पर मैं रवि शर्मा आपको स्वागतम कहता हूं। और बहनों भाइयों, कार्यक्रम के इस दौर में आपको मैं चिंतन पेश करता हूं, थॉट फॉर द डे। आज का विचार कीजिए, ध्यान से सुनिए और फिर भाई औरों के साथ भी इसे बांटिए, साझा कीजिए। आज के विचार के लिए हमें आलेख भेजा है सटन से प्रवीण धोनचक ने। प्रवीण भाई लिखते हैं कि किसी व्यक्ति की कमजोरी को, उसकी बुराई को बार बार दोहराने से, उसे अपमानित करने के इरादे से, लोगों में उसको फैलाने से ये मत समझिए कि आप बच जाएंगे, वो बुराई आपके भीतर भी एंटर कर जाएगी। इसलिए जितना जल्दी हो सके बुराई का चर्चा बंद करें, उसकी अच्छाइयों को उजागर करें ताकि वो सुनकर के उन पर गर्व कर सके और वो अच्छाई की ओर प्रेरित हो सके। बुराई जितनी चर्चित होगी उतनी फैलेगी, अच्छाई जितनी चर्चा में आएगी, बातचीत में आएगी, वो भी फैलेगी। तो अच्छाई फैलाइए ना। प्रस्तुत है प्रवीण भाई का भेजा आलेख, आज का चिंतन।

क्लास में चोरी हो गई। बच्चे ने शिकायत की, सर मेरी डेस्क पे रखी थी मेरी घड़ी, मैंने उतार के रखी थी और मैं 5 मिनट के लिए इधर उधर क्या हुआ, क्लास से बाहर गया, वापस लौटा तो मेरी घड़ी गायब थी। टीचर ने कहा, अभी तो कोई और बच्चा क्लास से बाहर नहीं गया है, इसका मतलब घड़ी किसी ने क्लास में ही उठाई है। बच्चों, जिसने भी उठाई है वापस कर दो। फिर टीचर ने थोड़ा गंभीर होते हुए सोच के कहा, देखो बच्चों, मैं नहीं चाहता कि किसी का अपमान हो, मैं नहीं चाहता कि किसी पर चोर का ठप्पा लगे, बदनाम हो, इसलिए ऐसा करते हैं, एक काम करते हैं, सभी स्टूडेंट्स कान खोलकर सुन ले, अपनी आंखें बंद कर लेंगे और जिसने भी घड़ी चुराई है वो चुपचाप घड़ी वापस उस स्टूडेंट की टेबल पे रख दे, कोई नहीं देखेगा, सब आंखें बंद कर लेंगे। इस तरह से किसी का नाम भी बदनाम नहीं होगा, घड़ी वापस आ जाएगी। किसी को अपमानित करना हमारा उद्देश्य नहीं है, बुराई को खत्म करना, बुरे को चिन्हित करना और उसको चोर का नाम दे करके आगे भविष्य में एक कॉम्प्लेक्स में जीने के लिए हम मजबूर नहीं करना चाहते। बोलो बच्चों, मंजूर है? सब बच्चों ने हाँ कहा। टीचर ने कहा, ठीक है, मैं 1 2 3 कहूंगा, सब बच्चे आंखें बंद कर लेंगे और उसके बाद 60 सेकंड्स के बाद जब मैं कहूंगा तो आंखें खोलेंगे। सुन लिया? सब बच्चों ने मान लिया। टीचर ने 3 काउंट किए, सबने आंखें बंद कर ली। टीचर ने फिर याद दिलाया, सब अपनी आंखें बंद करें, कोई आंखें ना खोले। 1 मिनट के बाद टीचर ने कहा, अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। आंखें खोल के देखा तो जिस बच्चे की घड़ी गायब हुई थी, चोरी हुई थी, उसकी डेस्क पे उसकी घड़ी वापस आ चुकी थी। उसने खुशी खुशी अपनी घड़ी पहन ली। टीचर ने आगे कोई चर्चा नहीं की, उद्देश्य पूरा हो गया, कहीं कोई शिकायत नहीं, कोई छानबीन नहीं, बस चोरी न करने का मशवरा, ये सलाह देकर के मामला रफा दफा कर दिया गया। अब साहब बरसों बाद देखिए, वो टीचर एक केस में, एक कोर्ट में पेश हुआ। जज ने बड़े सम्मान से टीचर को पहचान कर कहा, सर आप तो सम्मानित व्यक्ति हैं, आपके खिलाफ कोई भी मुकदमा सच्चा नहीं हो सकता। फैसला टीचर के पक्ष में गया, लेकिन जैसे ही मुकदमा खत्म हुआ तो जज ने बाहर आकर टीचर के पैर छू लिए। अरे ये क्या कर रहे हैं आप जज साहब? बुजुर्ग टीचर ने पीछे हटते हुए कहा। कहने लगा, सर आपकी बदौलत ही मैं आज जज हूं, आपकी बदौलत ही मैं एक सम्मान की जिंदगी जी रहा हूं। क्या कह रहे हो तुम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, टीचर ने पूछा। तो वो जज कहने लगा, सर मैं वही स्टूडेंट हूं जिसने क्लास में घड़ी चुराई थी, आपने सबकी आंखें बंद करवा के मुझे मौका दिया सुधरने का, मैंने घड़ी वापस डेस्क पे रख दी। पर सर आप भी कमाल के हैं, आपने किसी को कभी भी ये नहीं बताया कि वो चोर मैं था। टीचर ने कहा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। देखिए जज साहब, आप अपना काम बड़ी अच्छी तरह से बखूबी कर रहे हैं, आप करते रहिए सम्मान के साथ। नहीं सर, मैं ये गिल्ट निकालना चाहता हूं, इस अपराध बोध से मुक्त होना चाहता हूं, कॉम्प्लेक्स में जी रहा हूं तब से, मैंने चोरी की थी, बाकी सब बच्चों की आंखें बंद थी पर आपने तो देखा। टीचर मुस्कुराए, नहीं बेटा मैंने नहीं देखा, मैंने सबकी आंखें बंद करवाई थी, सबसे मतलब इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैंने खुद भी अपनी आंखें बंद कर ली थी, इसलिए मुझे कुछ नहीं पता किसने चुराई थी। अब तुम कहते रहो, मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि
सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो वो भूला ना कहलाए। तुमने घड़ी वापस की, उसके बाद मामला खत्म। आज तुम एक सम्मानित पोस्ट पर हो बेटा। गलतियां होती हैं, लेकिन गलतियों को सुधारा भी जा सकता है। उन्हें बार बार दोहरा करके किसी को अपमानित करने के इरादे से बुराई को बढ़ाना नहीं चाहिए, उसे जितना जल्दी हो सके मिटाना चाहिए, खत्म करना चाहिए। भूल सभी से होती आई, कौन है जिसने न ठोकर खाई। भूलों से सीखे जो मंजिल उसने पाई। सीखना चाहिए, इन्हें याद करके दोहराना नहीं चाहिए, किसी के अपमान के लिए उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। रात कटेंगी, होंगे उजाले, फिर मत गिरना ओ गिरने वाले। इंसान वो जो खुद संभले औरों को भी संभाले। इसलिए इरादा पक्का कर लो, समझौता गमों से कर लो। रात कटेंगी, होंगे उजाले, फिर मत गिरना ओ गिरने वाले। इंसान वो जो खुद संभले औरों को भी संभाले।

0: आज का चिंतन, आज का विचार, आलेख सटन से प्रवीण ढोंचक का। थैंक यू प्रवीण भाई। साथी भाई, आप बधाई देना चाहते हैं पैम सूरी को। पैम जी ने भाई डॉक्टरेट की उपाधि मिली है, वो हो गई है डॉक्टर पैम सूरी। भाई क्या कहते हैं, शो बिजनेस के फील्ड में बड़े बड़े उन्होंने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए हैं और बहुत सारे कलाकारों को प्रोत्साहित किया है, प्रोत्साहन दिया है, और शो बिजनेस से वो बड़े ही नजदीक से जुड़ी है बरसों से। तो कल एक कार्यक्रम में इससे सेलिब्रेट किया गया, कल नहीं मेरे ख्याल वीकेंड पर किसी दिन, तो हमारी ओर से भी पैम सूरी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। उन्होंने अपनी लिखी एक किताब भी रिलीज की है, पुस्तक, जिसमें बहुत सारे प्रेरक प्रसंग हैं। प्रवीण भाई की ओर से और भाई हम सब की ओर से भी पैम सूरी को इस उपलब्धि पर, अचीवमेंट पर बहुत बहुत मुबारकबाद। चिंतन को समेटते हुए याद दिला दो भाई, चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद मनोरंजन प्रोग्राम में शामिल किया जाता है। आज का चिंतन, आज का विचार अब समाप्त होता है।
1: चिंतन चिंतन
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके याद दिला रहे हैं, रेट अच्छा है भाई, पैसे भिजवाइए और साथ में उनकी एक खास ऑफर जो आजकल चल रही है उसका भी फायदा उठाइए। टुडेज रेट इज फॉर 1 pound sterling यू कैन गेट अप टू 127.1 rupees, 127.10 rupees भारतीय करेंसी में। इसके अलावा भाई वो कहते हैं कि सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून एंड बी इन टू विन 75 pounds वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर 1000 pounds, ऑल्सो 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 pounds। TNC apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio.
3: लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
4: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी।
3: समारा ब्लैक टी 1 kg 399, एलिफेंट मीडियम आटा 25 kg 14.99, फाल्कन ब्राउन शुगर 3 kg 399, लैला बासमती राइस 10 kg 11.99, सुहाना खमन ढोकला 500 g 199, फाल्कन रेड लेंटिल्स 1.5 kg 24.399, पार्ले जी मल्टीपैक बिस्किट 7.99 g 199, फाल्कन लेमन जूस 250 ml 3 for 1, फाल्कन कैश एंड कैरी
4: 82 Assistant Street, LE12JU, या Rowlett Hill, LE54UN.
3: Big deals, big savings, while stocks last.
5: Are we there yet?
6: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
7: Relax, I've booked the Uber already.
6: How? My roaming isn't even working yet.
7: I switched to Simzy before we left London.
6: Simzy? Since when are you the tech expert?
7: Since I decided I want a stress-free holiday.
8: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
9: T's and C's apply.
10: अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा।
11: महाराजा टूर्स ला रहे हैं कैप्टिवेटिंग चाइना 2026, शंघाई, बीजिंग, शान और चेंगडू का अनफॉरगेटेबल सफर, ग्रेट वॉल, टेराकोटा वॉरियर्स, हाई स्पीड ट्रेन्स और एडोरेबल पैंडास, फ्लाइट्स, होटल्स, इंडियन खाना और गाइडेड टूर्स सब इंक्लूडेड फ्रॉम 3,299 pounds पर पर्सन। विजिट maharajatours.co.uk या कॉल 07956154846।
12: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than Citybond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras, we've got it all. Call Citybond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
7: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
5: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
7: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
5: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
7: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
5: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
7: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
13: Pepe's Piri Piri is firing up its 258th store at Three Tons Parade on Stafford Road, Wolverhampton. Get ready for flame-grilled chicken, mouth-watering burgers, wraps, rice boxes, and the bold Pepe's flavor you love. Now serving at Wolverhampton Three Tons Parade. Pepe's Piri Piri. Taste the flame.
14: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org, assuming you want to get noticed.
15: Bring your vision to reality with ImagineX Global. Our team of Imagineers create immersive experiences from digital content to epic live events. Whether it's a high-energy concert, an innovative conference, sleek brand visuals, or stunning photography and videography, for your special moments, we have you covered. We're a tech-driven, human-led creative experience company delivering cutting-edge digital solutions and expert event management. Let's turn your ideas into epic memories. Contact us today at imaginexglobal.com or WhatsApp 0758 580180. And let your ideas take center stage. ImagineX Global, where creativity, technology, and humanity unite the world.
16: Uncle G spent £40,000 on rent, but zero online. His shop is empty. His nephew's TikTok is booming. Be seen. Visit HeartyHanks.com. Hearty Hanks, outdated is out of business. Visit HeartyHanks.com today.
17: This week's Like Extra podcast, Radio Valley talks to special guests about being South Asian and in a living relationship.
18: It's always a gamble. Life is a gamble. Marriage is a gamble. Relationships are as well. It can change within the year you meet somebody. Yeah. It can change within the year after you get married. It could change 25, 26 years after you're married. Anything can happen. Anything is possible.
19: Like Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms.
20: Leica Radio.
19: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio, with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world.
21: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. Chahe Europe ho ya duniya ka dusra kona, har trip feel hota hai the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

0: जुर्रत फिल्म का गीत भाई, यूजुअली हम इसे संभाल के रखते हैं करवा चौथ के लिए या फिर किसी ऐसे अवसर के लिए जब सुहागने अपने सौभाग्य की लंबी उम्र के लिए दुआ करती हैं गीत के माध्यम से। पर कंप्यूटर को तीज त्योहारा का इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन लता जी की आवाज में ये गीत एक अरसे बाद सुनकर के अच्छा लगा होगा आपको। वेल दैट वाज लता मंगेशकर, जुर्रत फिल्म का गीत आपने सुना। और इससे पहले बैक टू बैक संगीत में ए यार सुन यारी तेरी, दैट वाज टेकन फ्रॉम द फिल्म सुहाग। तो बैक टू बैक संगीत सुनवाते हुए हम आ गए हैं इस मोड पर।
1: Leica Radio. Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit derryvalley.net.
0: Karnatak Sangeet ka ehsaas. Rafi Sahab aur Lata Ji ki aawazon ke paas. एकदम ऐसा लगता है जैसे भाई साउथ इंडिया में पहुंच गए हैं। और ये तर्ज और ये स्टाइल और ये गायन,

0: इतना सस्ता डील देखा है कभी?
1: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी।
2: समारा ब्लैक टी 1 kg 399, एलिफेंट मीडियम आटा 25 kg 14.99, फाल्कन ब्राउन शुगर 3 kg 399, लैला बासमती राइस 10 kg 11.99, सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम 199, फाल्कन रेड लेंटिल्स 1.5 kg 24.399, पार्ले जी मल्टीपैक बिस्किट 7.99 ग्राम 199, फाल्कन लेमन जूस 250 ml 3 for 1, फाल्कन कैश एंड कैरी
1: 82 असिस्टेंट स्ट्रीट LE12JU या रोलेट हिल LE54UN।
2: बिग डील्स बिग सेविंग्स व्हाइल स्टॉक्स लास्ट।
3: 105 शोज पूरा कर्या पछी हवे लेस्टर मा आवी रह्यु छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी नाटक
4: जेज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखना रे जो हसबंड जी
3: लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनो फुल डोज 28 जून पीपल सेंटर लेस्टर मा बे शानदार शोज बपोरे 2:30 वागे अने सांजे 7 वागे। टिकट्स बुकिंग माटे कॉल करो मिस्टर B07860280655 मुंबई सैंडविच स्टेशन 07834832249 अथवा eventbrite.co.uk। सखना रे जो हसबंड जी।
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danu. Prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.
7: Mum always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath, over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care. Siddhayu, now available in Falcon Cash and Carry, Leicester and Nottingham. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.
8: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, लागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
9: ट्रांसफर मनी होम एंड टर्न एवरी ट्रांसफर इन टू chance to win while making your money go even further with SBI UK.
10: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
9: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
10: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
9: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
10: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
9: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18+. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
11: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
12: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
11: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
12: गारंटेड
11: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
12: फोन 02085748410।
11: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
13: It was just another day, a familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend. And he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions. Especially on country roads, where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
14: You've got great products, loyal customers, but no digital strategy. You're one scroll away from being forgotten. Don't risk it. HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Don't disappear. Dominate. Visit HeartyHanks.com today.
15: This is the largest commercial Asian radio. Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro station? Playing Bollywood classics 24-7. And with your favorite presenters live. Get the tune-in details at leicagold.com. RTE Greatest of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
16: और भरे भाई नए सप्ताह की शुरुआत एक नए आर्टिस्ट ऑफ द वीक के साथ. लेकिन भाई कलाकार बहुत पुराना है और साहब बच्चे बच्चे की जुबान पे उनका गाया हुआ गाना है. लेकिन सुना है कि वो जो भी काम करते हैं परफेक्ट करते हैं. यानी आप उन्हें सुरमा बेचने का काम भी सौंप दे तो भाई बहुत अच्छी खासी कमाई करेंगे वो. तो साहिबान मेहरबान कदरदान कान का सुरमा नाक की शाही लेने के. कान में कौन सा सुरमा होता है? आँख का सुरमा निराला. ये है सुरमे वाला किशोर कुमार आर्टिस्ट ऑफ द वीक.

ये वक्त ये जमाना जब ना लगे सुहाना फिर मेरे पास आना, खादिम हूँ मैं पुराना, रखता जो कुछ नजर है।

0: धरता हल्का। सुनते हो मेरे भाई, फेरो तो एक तलाई, कीमत है तीन पाई, है कोई नजर वाला या है कोई नजर वाला।
1: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
3: और इससे पहले कि भाई इनका स्पॉन्सर्ड गीत हम आप तक पहुंचाएं, ये बता दें कि इस सप्ताह के कलाकार हैं किशोर कुमार, और किशोर दा की आवाज में एक वो सुरमे वाला गीत हमने सुनवा दिया, पर सप्ताह भर भाई एक गीत स्पेशल उनकी आवाज में हम आपके सामने परोसा करेंगे और आप उसे लाइक करेंगे गारंटीड। अब ये गीत जो आ रहा है ये आपको याद दिला रहा है एक ऐसी अभिनेत्री की जो भाई फिल्मों में आई थी तूफान की तरह, आज भी वो छुपट रोल्स में नजर आती हैं, लेकिन आज वो अपना जन्मदिन मना रही हैं। कौन है ये अभिनेत्री, गीत सुनकर के पता लगाइए। बड़े गंभीर रोल किए हैं भाई, जब आई थी तो ग्लैमरस क्या कहते हैं हीरोइन थी और सुपर हिट हो गई थी उस जमाने के मेगा स्टार के साथ शादी करके, और फिल्म भी बहुत सुपर हिट हुई थी इनकी भाई पहली फिल्म, लेकिन फिर दिए बड़ी सुलझी हुई अभिनेत्री बन गई। कौन है ये?

0: ये गीत सुनकर याद आई फिल्म रुदाली। रुदाली भाई वो जो किराए पर मिलती है रोने के लिए, व्हाट अ ट्रेडिशन कि भाई किसी के यहाँ अगर कोई डेथ हो जाए तो भाई रोने वाली किराए पर मिलती थी। कहीं कहीं ये परंपरा शायद आज भी जीवित हो। वाला उस फिल्म में बड़ा जबरदस्त रोल किया था फिल्म अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया ने। और भाई डिंपल जी आज अपना जन्मदिन मना रही हैं, 8 जून 1957 में पैदा हुई थी। भाई आज ही के दिन वैसे शिल्पा शेट्टी भी, कुंद्रा भी पैदा हुई थी, वो 1975 में पैदा हुई है, 1957 में, आंकड़ा बस इधर उधर होता है। और जबरदस्त अभिनेत्री, आज हम उनको हैप्पी बर्थडे कहते हैं, ये डिंपल कपाड़िया जी। बॉबी फिल्म में क्या तहलका मचाया था इन्होंने अपने आगमन से। तो साहब और भी कई लोगों के जन्मदिन है, आज आगे चल के जिक्र करेंगे। Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.
0: और टिल्डा वालों की ओर से गीत सुनवाने से पहले बता दो भाई, लाइका रेडियो नेटवर्क टीम्स अप विद जी टीवी फॉर द स्टेज शो हमारे राम, जो जुलाई में आ रहे हैं यहाँ भाई लेकर के, टेकिंग प्लेस बिटवीन 9th एंड 12th जुलाई एट लंडन्स एवेंटिम अपोलो, ये हैमर स्मिथ में है। इट स्टार्स आशुतोष राणा रावण की भूमिका में होंगे और राहुल बुचर जो है वो राम की अभिनय में होंगे। तो साहब देखना मत भूलिएगा, ये हमें याद दिलाना था आपको। अब मैं बात कर रहा था जन्मदिन मनाने वाले कलाकारों की, और साहब डिंपल कपाड़िया, शिल्पा शेट्टी के अलावा और कौन कौन आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। मैनी पीपल, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। हमारे बैसन साहब याद दिला रहे हैं कि आज वो जो एक बेबी फरीदा होती थी भाई फिल्मों में, राम और श्याम में जिस दिलीप कुमार का डबल रोल था, लेकिन एक बच्ची उसमें है जिसका जन्मदिन मनाते हुए आई है बहारे मीठे जुल्म सितम गीत गाते हैं दिलीप कुमार, वो बेबी फरीदा का बर्थडे था। बेबी फरीदा उसमें, आई डोंट नो क्या नाम था फिल्म में उनका, लेकिन वो बच्चों के रोल में बहुत सारी फिल्में उन्होंने की, बाद में दूसरे भैया मैच्योर रोल भी किए। उनका आज बर्थडे है। और आज जन्मदिन एक हास्य अभिनेता का भी है, कौन भाई आपको जानकर हैरानी होगी कि उन पर भी हमने गीत ढूंढ लिया है। और गीत कौन सा है देखिए, फिल्म परिवार में एक गीत था जो राजेंद्र नाथ पर पिक्चराइज हुआ। राजेंद्र नाथ हास्य अभिनेता, अरे साहब गाना तो प्रेम चोपड़ा पर भी पिक्चराइज हमने ढूंढ लिया था, लेकिन राजेंद्र नाथ का आज वो दुनिया में होते तो अपना जन्मदिन मना रहे होते। दुनिया में नहीं है लेकिन भाई उनके संवाद, उनकी हास्य वाली भूमिकाएं आज भी गुदगुदाती हैं, हंसाती हैं लोगों को। ये गीत उन पर पिक्चराइज हुआ था।

0: 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra tour.
1: Also explore 2026 cruises.
0: From Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call City Bond Travel on 01162 167 225. We're at all protected. Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
2: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
0: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
2: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
0: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
2: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
0: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
3: Save the date. Friday 3rd to Sunday the 5th of July. And Indian Summer is back.
4: Presented by Inspirate. Exclusive radio partner, Leica Radio Midlands.
3: For sponsorship inquiries, call Leica Radio on 0116 471 0697.
4: Or sales at leicamedia.co.uk.
5: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ आप पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ अपना परिवार साथे जहां मळशे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलिडेज कॉल करो 02037736333 मंत्रा हॉलिडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा
6: हे hey, फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना
7: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स
6: क्रंच कैन नॉट वेट सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ
8: Lester Mellor is back with exclusive radio partner Leica Radio August 15th and 16th at Abbey Park Leicester
9: माँ को बोल कि जल्दी मच्छी लेकर आए
10: हो अपनी माँ को बोलो मैं लेकर आऊंगा
11: नाम परशुराम अधर्म का करता हूँ काम तमाम
9: अरे कहाँ हो तुम
10: हो आलो आलो
11: परिवार उसके लिए चारों धाम बाहर वो है परशुराम
3: Watch Mr. and Mrs. Parshuram Monday to Sunday at 7:30 PM only on Utsav Plus. Sky Channel 705, Virgin Media 803 and EE392.
8: Miss your favourite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. It could be Breakfast with Kajal, Drive with Raj Badden, the legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Leica Radio Midlands when you want. Next, Gold Afternoons with Bali Brambat on Leica Radio Midlands.
12: Manoranjan with Ravi Sharma.

छलके तेरी आंखों से शराब और ज्यादा, मतलब क्या है कि चलता फिरता ठेका बन जाओ दारू का। लीजिए साहब, आपसे इजाजत लेने का समय हो गया है। मेरी बात हंसी में मत डालो, मेरी बात पे थोड़ा गौर करो। हालात का रोना रोते हो, जज्बात पे थोड़ा गौर करो। थोड़ा सा करम मेरी आंखों पे, मेरे हाथ पे थोड़ा गौर करो। शायद बिछड़ू तो पछताओ, अपने साथ पे थोड़ा गौर करो। साथ निभाने का वादा करते हुए चलने का इरादा करते हैं। अगली मुलाकात कल सुबह 10 बजे की खबरों के बाद। तब तक के लिए रवि शर्मा को अनुमति दीजिए और बाली भाई का इंतजार कीजिए। हैव ए सुपर्ब डे, बाय बाय।

0: जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ।

0: श्री 420 का ये गाना एंड रिदम सेक्शन पूरा हैंडल करते थे दत्ताराम वाडकर. वी आर रिमेम्बरिंग हिम ऑन हिज 19th डेथ एनिवर्सरी. ही पास्ड अवे ऑन 8th ऑफ जून 2007. इट वाज अ वेरी सैड डेथ. नेक्स्ट आवर वी शैल बी प्रेजेंटिंग दत्ता वाडकर.
1: Gold Afternoons with Bali Brahmbhat. Bali Brahmbhat is sponsored by Gemin Foods. Tamara Tea Time no asli hero. Dal bhat, pav bhaji, biryani, namkeen, khakra, chikki, potato chip, mango pulp, pani puri, so many varieties for everyone. Marshe tamara najikna Asian shops ma.
2: Packed for the trip? Gifts? Passport?
3: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
4: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
3: Simzy?
4: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
5: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
6: हर केस में कम से कम एक विटनेस तो होता ही है, मर्डरर खुद.
7: कोलकाता में हमारे घरों के आसपास ये सब हो रहा है. हम डॉक्टर संदीप चक्रवर्ती, ओनर साइकियाट्रिस्ट.
8: वन मोर ग्रूसम मर्डर.
6: दोनों विक्टिम्स 20s में, दोनों फीमेल. ही इज नॉट गोइंग टू स्टॉप. देयर आर मेनी मोर इन डेंजर.
5: करिश्मा कपूर इन एंड एज ब्राउन नाउ स्ट्रीमिंग ऑन हिंदी Z5.
9: अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा.
10: महाराजा टूर्स ला रहे हैं कैप्टिवेटिंग चाइना 2026. शंघाई, बीजिंग, शान और चेंगडू का अनफॉरगेटेबल सफर. ग्रेट वॉल, टेराकोटा वॉरियर्स, हाई स्पीड ट्रेन्स और एडोरेबल पैंडास. फ्लाइट्स, होटल्स, इंडियन खाना और गाइडेड टूर्स सब इंक्लूडेड. फ्रॉम £3,299 पर पर्सन. विजिट maharajatours.co.uk या कॉल 07956154846.
11: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.

0: इसमें जो प्रेल्यूड था, जिस देश में गंगा बहती है, इसमें इट वॉज द डफ वॉज प्लेड बाई स्टिक्स.
1: दिस इज लाइक अ रेडियो अक्रॉस द मिडलैंड्स.
0: यह है फिल्म श्रीमान सत्यवादी, जिसमें म्यूजिक डायरेक्टर थे हमारे दत्ताराम वाडकर. नेक्स्ट आवर उनके कंपोज किए हुए गाने और दूसरे गाने सुनाएंगे. जुड़े रहिएगा.

0: ऐसे गाने सुनकर मन पावन पावन हो जाता है। कहानी कुछ यूं शुरू होती है, सब तकदीर का खेल है। देखो, यू नो, अ चांस मीटिंग दैट रिजल्टेड टू अ लाइफ लॉन्ग एसोसिएशन। चांस मीटिंग किसके साथ किसकी हुई, सुनिएगा। एक बार शंकर ऑफ शंकर जयकिशन, वो मिले दत्ताराम जी को, दत्ताराम वाडकर को, एक अखाड़े में। अखाड़ा अगर ट्रांसलेट किया जाए तो जिम बोला जाता है। तो अगर आप विकिपीडिया में किधर भी पढ़ोगे तो बोलेंगे जिम में मिले थे, मतलब कि एक अखाड़े में मिले थे वो, क्योंकि दोनों को रेसलिंग का बहुत शौक था एंड बोथ वर कीन एट लर्निंग हाउ टू रेसल। तो वहाँ पे ये चांस मीटिंग हुई विच रिजल्टेड टू अ लाइफ लॉन्ग एसोसिएशन। शंकर जी बड़ा प्रभावित हुए उनको मिलकर, एंड देन शंकर जी ने उनको इंट्रोड्यूस किया पृथ्वी थिएटर में, जहाँ पे शंकर जी काम करते थे, वेयर दत्ताराम जी वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लेइंग तबला। नाउ दिस इज वेयर ही वॉज नोटिस्ड बाय राज कपूर जी। नाउ व्हेन द रेगुलर तबला प्लेयर ऑफ अ पर्टिकुलर सॉन्ग इन आवारा, गाना था एक बेवफा से प्यार हुआ, प्यार किया, सॉरी, यू नो, तो इसमें जो रेगुलर तबला प्लेयर थे पंधारीनाथ नागेश्वर, हम तो बोलते पंडित पंधारीनाथ नागेश्वर, जो दत्ताराम जी के पहले फॉर्मल टीचर रहे सिखाने में। सो फिल्म आवारा का ये गाना जब वो रिकॉर्डिंग में नहीं आ पाए तो दत्ताराम जी को बुलाया गया और उनको कहा कि आप इस पे रिदम कीजिएगा। सो ही प्लेड ऑल द वेरिएशंस सो एफर्टलेसली दैट ही वेंट ऑन टू बिकम द परकर्शन अरेंजर फॉर शंकर जयकिशन, ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज द असिस्टेंट विद सेबास्टियन डिसूजा फॉर द शंकर जयकिशन टीम विद इफेक्ट फ्रॉम फिल्म नगीना 1951 की। So when so required, Dattaram used to play tabla and other percussion instruments with equal ease. Itni sifat se wo baja rahe the. And his innovative use of duffli, jo maine aapko gaane sunaye the, Dil Ka Haal Sune Dilwala, and then Hoton Pe Sachai Rehti Hai, wo sticks bajayi thi sticks ke saath. Lekin teesra gaana jo hai, Mera Naam Raju, जिस देश में गंगा बहती है का, वो इस शो के आखिर में आपको सुनाऊंगा मैं। ही प्लेड द डफ विद फिंगर्स, जी हाँ। एंड इनके दो टीचर्स थे इनको सिखाने में। सबसे पहले 1942 में इनकी माताजी के साथ वो जब बॉम्बे पहुंचे, विच वॉज नोन एज बॉम्बे विच इज नाउ मुंबई, वो जब पहुंचे तो पहले तीन महीने जब पंधारीनाथ जी ने, नहीं, यशवंत केरकर जी उनके दूसरे एक टीचर थे, उन्होंने उनको मिलवाया हमारे वंडरफुल कंपोजर, दैट वाज सज्जाद हुसैन जी, उनके साथ इन्होंने तीन महीने गुजारे थे लर्निंग क्लासिकल राग्स, यू नो, उनके असिस्टेंट बनकर। फिर उसके बाद शंकर जी के साथ वो प्ले करने लगे और असिस्टेंट बन गए शंकर जयकिशन जी के। तो दो टीचर थे when he went to Bombay in 1942 with his mother. Did you know his original surname was Shirodkar? Ab mujhe nahi malum ke ye Wadkar kab se ho gaya. To main aapko ek shakhs ke saath baat karaunga, a special person who is going to come on radio to talk to us, and you will get a big surprise in about 2 minutes. Pandit पंधारीनाथ नागेश्वर के साथ फर्स्ट फॉर्मल टीचर थे इनके, और यशवंत केरकर, ही ट्रेन्ड हिम ऑन क्लासिकल तबला, ही वाज अ क्लासिकल तबला टीचर, बाद में उन्होंने सिखाया था इनको। सो वी आर टॉकिंग अबाउट नन अदर देन दत्ताराम वाडकर, जी हाँ। उन्होंने दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए भी गाने करके दिए थे रिदम सेक्शन, दैट वॉज सलील चौधरी जी। फिल्म मधुमती में इन्होंने तीन गाने इनके लिए कंपोज करके दिए थे। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, घड़ी घड़ी मेरा दिल धड़के, जो मैंने नंबर वन सॉन्ग दिस आवर सुनाया था आपको, एंड आजा रे परदेसी, आजा रे, वो वाला गाना। सो तीन गाने, एंड देन एक बार क्या हुआ था कि एक ढोलक प्लेयर, रोशन जी के ढोलक प्लेयर, ही वेंट सिक, एंड दत्ताराम जी को बुलाया गया एट द 11th आवर, एंड गाना था, फिल्म थी अजीबस शुक्रिया, उसमें एक गाना था सारी सारी रात तेरी याद सताए, वो अभी आपने जो सुना लास्ट गाना, वो गाना रोशन जी के लिए इन्होंने प्ले किया था। इन्होंने अबाउट 19 फिल्में एज अ म्यूजिक डायरेक्टर कंपोज किए थे, और ब्यूटीफुल फिल्म्स, मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगा कौन सी फिल्म थी। एक मगधी फिल्म, मगधी इज अ वेरी ओल्ड लैंग्वेज जिसमें काफ़ी लोग ये भाषा बोलते हैं, उसकी एक फिल्म की थी, एक मराठी फिल्म, एक भोजपुरी फिल्म। सो दत्ताराम वाडकर की बात कर रहे हैं हम, एंड इट इज़ हिज 19th डेथ एनिवर्सरी। द डेट एक्चुअली इज 7th of June 2007 when he passed away, and जो फिल्मों के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो थी अब दिल्ली दूर नहीं, एंड देन उन्होंने दूसरी फिल्मों में भी जो काम किया था। अभी कल्याण जी, आनंद जी, ऑफकोर्स कल्याण जी भाई, देवर वेन ही स्टार्टेड डूइंग सोलो म्यूजिक डायरेक्शन, फिल्म थी पीओ बॉक्स नंबर 999 1958 की, उसमें एक गीत था मेरे दिल में है एक बात, जो हमारी लाइब्रेरी में नहीं है लेकिन मैं सुनाता तो आपका दिल खुश हो जाता। और इन्होंने दूसरे गाने जो कंपोज किए थे एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, वो मैं आगे जाते हुए आपको सुनाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट सॉन्ग इज गोना बी फ्रॉम चोरी चोरी, ये रात भीगी भीगी। लेकिन अब मैं बुलाऊंगा उनको, अभी फोन बज रहा है, अब मैं आपको बता देता हूं, इनका नाम है शरद वाडकर। शरद वाडकर जी इनके बेटे हैं जो लेस्टर में रहते हैं, दत्ताराम वाडकर जी के बेटे। तो अभी उनसे हम बात करते हैं। हेलो शरद वाडकर जी।
1: जी नमस्ते।
0: द ग्रेट सन ऑफ द ग्रेट दत्ताराम वाडकर जी।
1: नमस्ते नमस्ते
0: अली। नमस्ते नमस्ते, मुझे इतनी खुशी हो रही है आपसे बात करके, और लिसनर्स को भी आपकी आवाज सुनाने में। आई थैंक्स टू अपना दोस्त जयदेव सोनी, जिन्होंने आपको इन्फॉर्म किया कि मैं ट्रिब्यूट कर रहा हूँ आपके डैडी के। तो
1: थैंक यू फॉर द ट्रिब्यूट टू माय डैडी, एंड मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप और लाइका रेडियो के लिए।
0: शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब आप मुझे इतना बताइए कि आप भी रिदम तो प्ले करते हैं ना?
1: मैं पहले करता था, मैं थोड़ा सीखा हुआ था।
0: अच्छा, आपने डैडी से ही सीखा होगा, नेचुरली आपके गुरु होंगे वो।
1: डैडी से नहीं सीखा मैं, क्योंकि डैडी ने फिर क्या, हम लोग बैंड्रा में रहते थे।
0: हाँ जी,
1: मुंबई।
0: हाँ जी,
1: मुंबई ना बॉम्बे बोलते थे तभी, बैंड्रा में। हाँ। हम लोग रफी साहब के सामने रहते थे।
0: ओके।
1: तो रफी साहब का लड़का शाहिद और मैं एक स्कूल में पढ़ते थे हम लोग।
0: अरे वाह। ओके। हाँ,
1: तो उधर भी जावेद जाफर भी, उन लोग भी सब पढ़ते थे। तो वहां से फिर हम लोग आना जाना होता था शाहिद और मेरा घर पे, तो मैं वो ट्रॉफी देता था उधर, लेकिन कभी याद नहीं था कि ये इतने महान हस्ती थे। और डैडी से कभी बोलते नहीं थे, और रिकॉर्डिंग से आते थे तभी। तो रफी साहब के घर में तो मैं बहुत बार जा चुका था।
0: अच्छा।
1: लेकिन बड़ा हो गया तब मुझे मालूम हो गया कि ये रफी साहब है घर की।
0: अच्छा, ये बेटा जो जानता नहीं था उनके डैडी कितने बड़े थे।
1: नहीं नहीं, वो कभी हम लोग को कभी उनकी बात ऐसा कुछ नहीं करते थे।
0: बहुत महान आदमी।
1: घर पे इतने लोग आते थे, शमी कपूर जी वो सब आते थे।
0: अच्छा, तो मुझे
1: देखा है, जब से तुम्हें देखा है डैडी ने म्यूजिक दिया है उसमें, शमी कपूर से।
0: अच्छा, मैं आपको एक गुजारिश करना चाहता हूँ, आप लाइका स्टूडियो आकर इन हमारे यूट्यूब चैनल पे इंटरव्यू करेंगे?
1: लेकिन लंदन में आना पड़ेगा ना?
0: हाँ, क्योंकि हम बैठ के ना फिर उनके बारे में पूरी उनकी कहानी आपसे बेहतर कौन जानता होगा।
1: बहुत बहुत ऐसा प्राइवेट भी कहानी मालूम नहीं है।
0: तो मैं जरूर आपको,
1: इंसान का स्ट्रगल होता है ना।
0: हाँ जी।
1: तो जो मीडिया वाले डालते हैं वो डालते हैं, लेकिन उसके पीछे की कहानी क्या है एक्चुअली?
0: हाँ, असली कहानी तो आपके मुंह से हम सुनेंगे। सो टू द लिसनर्स, वी आर टॉकिंग टू नन अदर देन शरद वाडकर, हु इज द सन ऑफ हमारे दत्ताराम वाडकर जी। सो उनकी असली ट्रू स्टोरी जो विकिपीडिया में गलत गलत छापी जाती है वो हम आपको बताएंगे। सो आपको मैं संपर्क करूंगा और आप जरूर आइएगा और उनके बारे में बताइएगा शरद जी।
1: जी जी जी। और दूसरी बात है, अभी जैसे वो
0: खाना
1: है ना, हाँ,
0: हाँ जी,
1: उसमें दो तबले बजे, एक करीम लाला ने बजाया, एक डैडी ने बजाया, दो तबले।
0: ओ माय गॉड, दीज आर द स्टोरीज आई वांट टू हियर। ये सब हमको कहां से मिलेगी? ये कहानियां सिर्फ आपसे ही मिलेगी। सो आई एम सो लकी, आई थैंक गॉड टुडे के आपसे मेरी,
1: आई एम लुकिंग एक्चुअली नो,
0: हां जी,
1: आई डू अप्रिशिएट यू एंड आई एम फॉलोइंग यू एंड आई थिंक यू आर अ बिग पर्सन बिकॉज़ सो हंबल एंड यू हैव अ आई थिंक सो यू आर द ब्रदर ऑफ समथिंग ऑफ सम
0: बॉब, मेरा भाई। हां शुक्रिया। तो आगे मैं बढ़ता हूँ, इनके गाने सुना दूँ, हमारी बातें तो चलती रहेगी। मैं बाद में आपको फोन करूँगा, आपको फोन करूंगा मैं बाद में
1: जी। कुछ गलती हो तो मेरे से तो माफ कर दूंगा।
0: अरे नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप आए, आपका बड़प्पन है, इट्स सो नाइस यू केम ऑन एयर टू टॉक अबाउट।
1: सब जो लिसनर्स हैं उनको मेरी तरफ से प्लीज थैंक यू बोलना
0: जरूर,
1: और नमस्ते बोलना।
0: सुन रहे हैं सब, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय,
1: बाय
0: बाय, बाय बाय। व्हाट अ हम्बल पर्सन, एंड ही इज थैंकिंग अस, वी शुड थैंक हिम रियली।
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling can get you up to 127.3 Indian rupees. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. TNCs apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
3: You're listening to Bali Brahmert in Gold Afternoons. Gold Afternoons. Proudly sponsored by Jemin Foods. Quality, taste and tradition in every pack. Find your favorites at Asian shops near you.

0: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
1: ये गाने जो आप सुन रहे हैं, पिछला गाना जो था अब दिल्ली दूर नहीं, कंपोज्ड बाय दत्ताराम वाटकर, ये है परवरिश फिल्म का गाना, कंपोज्ड बाय दत्ताराम वाटकर, इवन द नेक्स्ट सॉन्ग जिंदगी और ख्वाब का। द ग्रेटनेस ऑफ दत्ताराम वाटकर एज अ कंपोजर एंड

0: Dattaram Vadkar, who composed this song. I'm so proud to have talked to Sharad Vadkarji today. Hope you enjoyed it.
1: Back to back hits across the Leica Radio Network.
0: और ये भी गाना देखो, कहती है झुकी झुकी नजर. सुमन कल्याणपुर जी ने क्या गाया और क्या कंपोज किया हमारे दत्ताराम वाडकर जी ने.

0: 51-year-old Shilpa Shetty, winner of 11 awards totally, and nominations for 30 awards, 4 Filmfare awards, and not surprising because she got the Long Island, New York, United States Award, Bollywood Movie Awards for Pardesi Babu. Happy birthday, Shilpa Shetty.
1: This is Leica Radio across the Midlands.
2: तूने अभी देखा नहीं देखा है तो जाना है तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम

देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं जाना है तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किसी में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम

0: to all Moshians all over the world.
1: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल. एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ. सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे.
2: नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो.
0: सैंडी शॉ नेक्स्ट एंड राज बदन ऑन लाइका रेडियो मिडलैंड्स. पाली ब्रह्मभट्ट का नमस्कार.

0: एक नई मोहब्बत की दास्तां, तुमसे तुम तक, हर रोज रात 8 बजे आपके अपने जी टीवी HD पर।
1: अभी ना, यहाँ से मेरा रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है। क्या तुम मेरे साथ? ये फैसला मेरा था, भुगत तुम रही हो। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ।
2: अगर हम साथ हैं
1: तो जिंदगी की हर मुश्किल को हरा देंगे।
3: खुशियों को लगी वक्त की नजर, कैसा होगा अबीरा अरमान का नया सफर?
4: ये रिश्ता क्या कहलाता है? मंडे टू संडे 7 PM ऑन स्टार प्लस, अवेलेबल ऑन स्काई 705, वर्जिन मीडिया 803, EE 392 एंड अप टीवी, प्रेजेंटेड बाय travelup.com, पावर्ड बाय नेटको फूड्स।
5: हेरल्ड, न्यू वर्ल्ड ऑफ इको फ्रेंडली डिस्पोजेबल्स फॉर रेस्टोरेंट्स, कैफेज, केटरर्स, फूड टेकअवेज एंड फूड डिलीवरी सर्विसेज। ऑर्डर योर फ्री 2025 कैटलॉग टुडे। Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash-in carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
6: Uncle G spent £40,000 on rent, but zero online. His shop is empty. His nephew's TikTok is booming. Be seen. Visit HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Outdated is out of business. Visit HeartyHanks.com today.
7: A Leica Radio Classic plays now.

0: दास्तां। मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से।
1: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
2: खुद से भी ज्यादा।
0: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में।
2: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है।
0: क्या ये नजदीकियां बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुमसे तुम तक हर रात 8 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394।
3: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
4: 4 beers, please, garçon!
3: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
5: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious, delicious possibilities with Tilda.

0: is Leica Radio across the Midlands.
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
1: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
2: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
1: high appreciation
2: in Dubai.
3: Europe aur UK ke sapne dekh rahe hain? To Mantra Holidays ke saath travel kijiye. Dil ki dhadkane badha dene wale Scottish Highlands, Snowdonia ke afsanvi landscapes aur stunning coast of Cornwall ko explore kijiye. Aapka safar hoga majestic Swiss Alps se lekar romantic Paris aur timeless beauty of Italy ke through.
4: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-6333 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
6: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Leica Radio.
7: ગડબડ ગોટાળા છે, પ્રોબ્લેમ્સ મોટા છે, પણ બધું ઓલરાઈટ છે.
8: મેં છે ને બેક ટુ બેક 3 મૂવીઝ જોઈ લીધી.
7: ગેટ રેડી ફોર અ ફૂલ ઓન કોમેડી કેઓસ વિથ વિરજ ગેલાની એન્ડ ઉમંગ વ્યાસ ઇન ધ મૂવી. બધું ઓલરાઈટ છે.
8: બે ત્રણ કલાકમાં પાછો આવી જશે ને પછી બધું ઓલરાઈટ થઈ જશે.
7: ઇન સિનેમાઝ ઓન 12th ઓફ જૂન. ફોર મોર ઇન્ફો વિઝિટ બકરાનિયા મીડિયાઝ ઇન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ.
9: એવું લાગે છે કે પિક્ચર ચાલશે.
10: Save the date, Friday 3rd to Sunday the 5th of July, and Indian summer is back.
11: Presented by Inspirate, exclusive radio partner, Leica Radio Midlands.
10: For sponsorship inquiries, call Leica Radio on 0116 471 0697
11: or sales at leicamedia.co.uk.
12: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी. सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS. कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर लेस्टर में.
13: माँ को बोल की जल्दी मच्छी लेकर.
14: हो अपनी माँ को बोलो मैं लेकर आऊंगा.
15: नाम परशुराम, अधर्म का करता हूँ काम तमाम.
13: अरे कहाँ हो तुम?
14: हो आलो आलो.
15: परिवार उसके लिए चारों धाम, बाहर वो है परशुराम.
10: Watch Mr. and Mrs. Parshuram Monday to Sunday at 7:30 PM only on Utsa Plus. Sky Channel 705, Virgin Media 803 and EE392.
6: Easing you through the night with the Midlands' biggest Asian hits on Leica Radio.

0: ये है लाइका रेडियो टीवी एंड सी फाइव प्राउडली प्रेजेंट हमारे राम प्रोड्यूस्ड बाय फेलिसिटी थिएटर इंडिया और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एज रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई इवेंटिम अपोलो हैमरस्मिथ हमारे राम बुक योर टिकट्स नाउ विजिट www.eventimapolo.co.uk एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
1: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
2: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 02 03963 5757. Greens by Danube. Prime location.
1: High appreciation.
2: In Dubai.
3: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org. Assuming you want to get noticed.
0: This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network. Easing you through the night with the Midlands' biggest Asian hits on Leica Radio.

0: Striker Radio.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
2: 02085748410
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410 एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: Voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
4: Atif Aslam live in the UK.
3: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
4: Book your tickets now at AXS.
3: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
4: Exclusive radio partner, Leica Radio.
5: Uncle G spent £40,000 on rent, but zero online. His shop is empty. His nephew's TikTok is booming. Be seen. Visit HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Outdated is out of business. Visit HeartyHanks.com today.
6: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears. Give or take. Amplify your advertising at RadioCentre.org.
7: Like a radio.
0: The greatest Asian love songs across the Leica Radio Network.